चालली माया तुम्हाजा टाकू आज तई कुई कुई पातात पानी झुळझुळवानी फुलवीत जाई जाई दुई मोठी चालली माया तुम्हाजा टाकू आज तई कुई कुई अनपात

गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजीनगर. वेळ झाली एक्झॅक्टली 7:12. तुम्ही ट्यून केलंय MGM 90.8 FM आणि आरजी अदनान तुमच्या सोबत आहे. वार आहे सोमवार आणि सोमवारची ही मॉर्निंग म्हणजे कसं आहे, नको वाटते ही मॉर्निंग. वाटते की यार आज ऑफिसला नाही जायचंय, पण करावं तर काय करावं, पापी पेट का सवाल होता है और जाना ही पड़ता है. और वो कहते ना कि हर एक वीकेंड के बाद एक नई शुरुआत करने एक नया दिन आता है, तो वही सोमवार होता है और मन का वार नहीं होता, लेकिन वो हमें उसको गुजारना पड़ता है. खैर आज का दिन अच्छे से गुजारिएगा और एक मोटिवेशन लीजिएगा कि कल करे सो आज करे सो अब. ये बात याद रखिए, वरना हम सोचते कि यार आज नहीं कल काम करता हूं ना, और कल वही सोचते ठीक है ना यार आज नहीं कल करूंगा, तो ये बस ऐसा डिले होते ही होते और होते ही रहता है. तो इसीलिए कह रहा हूं कल करे सो आज करे सो अब. इसी थॉट के साथ आज के मॉर्निंग का आगाज करते हैं. बहुत सारी बातें होगी और भी बहुत सारे किस्से जानेंगे, गाने सुनेंगे कुछ ही देर में. तब तक स्टे ट्यून्ड.

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपने सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाइ नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति।

किस्सों का कारवा आरजी अदनान के साथ ऑन एमजीएम 90.8 FM। कहते हैं हर सोमवार एक नया मौका होता है पिछली गलतियों को सुधारने का। एक लड़का था, उसने एक छोटी सी दुकान शुरू की थी। पहले हफ्ते में उससे नुकसान हो गया। लोगों ने कहा, ये काम तेरे बस का नहीं है, छोड़ दे। वो थोड़ा टूट गया, लेकिन उसने सोचा गलती दुकान खोलने में नहीं थी, गलती तरीके में थी। अगले सोमवार उसने फिर से शुरुआत की। इस बार उसने ग्राहकों से बात की, उनकी पसंद समझी और अपनी गलतियों को सुधार लिया और धीरे धीरे वही दुकान चलने लगी। और कुछ साल बाद वही लड़का उसी शहर का सफल बिजनेसमैन बन गया। तो दोस्तों, गलती होना हार नहीं है, गलती से कुछ न सीखना असली हार होती है। इसलिए कहते हैं कि हर सोमवार एक नया मौका होता है पिछली गलतियों को सुधारने का। क्या पता आज का भी सोमवार आपके लिए एक नया मौका हो और कुछ ना कुछ आपकी भी जिंदगी में बदल जाए। तो इसी मोटिवेशन के साथ और इसी कहानी के साथ आज के सोमवार का आगाज करते हैं। स्टे ट्यून्ड। किस्सों का कारवा आरजी अदनान के साथ ऑन एमजीएम 90.8 FM।

0: वक्त हो चुका है एग्जैक्टली 7:54 और आरजे अदनान आपके साथ आ चुका है आपकी मॉर्निंग गुड करने इन द शो
1: All is well. RJ Adnan ka morning show. Freshness light radio ka flow.
0: On MTM 90.8 FM. और इस वक्त हम एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है
2: कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी.
0: तो इसका मकसद यही है कि आपको ना तो गिफ्ट जीतने का मौका दिया जाए और आपका भी थोड़ा ज्ञान बढ़ाया जाए और आपके दिमाग को फ्रेश किया जाए. तो चलिए फिर आज के पहले आपको सुनाता हूँ. सो जो सबसे पहले जवाब देगा उससे ही गिफ्ट मिलेगा. सो गौर से सुनिएगा ये पहली के मैं दिन में एक बार आता हूँ, सबको एक बार हंसाता हूँ, ना मैं इंसान ना मैं मशीन पर फिर भी सबको चलाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ. एक बार फिर से दोहराता हूँ, मैं ये गौर से सुनिएगा कि मैं दिन में एक बार आता हूँ, सबको एक बार हंसाता हूँ, ना मैं इंसान ना मैं मशीन पर फिर भी सबको चलाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ. सो इसका एकदम सही सही जवाब दीजिएगा इस पहले का 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर. और ये नंबर नोट करके रखिएगा, बहुत काम का नंबर है 9359320080. सो जो जल्दी से जल्दी जवाब देगा उसे ही गिफ्ट मिलेगा. बाद में मत कहना कि मैंने जवाब दिया था आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया. अगर आप लेट जवाब दोगे तो आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा. सो जल्दी करे फोन उठाए और बाकी तो सुनते रहे MGM 90.8 FM.

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदार दादा दास है तेरे होठों की प्यास है।

0: मॉर्निंग, वेलकम बैक एंड लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और अपने साथ है डॉक्टर मानसी करसगांवकर, लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम, मेरा आज आपसे सवाल ये है, डिप्रेशन में जाने की रीजंस क्या हो सकते हैं?
1: काफी सारे रीजंस है वैसे तो, बट ब्रॉडली अगर देखा जाए तो हम उनको ब्रैकेट कर सकते हैं ब्रॉडली चार चीजों में। जैसे एक हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर, कि जैसे उनके अंदर के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या उनकी जो ब्रेन केमिस्ट्री है उनमें बदलाव आना, वो एक बायोलॉजिकल फैक्टर में आता है। दूसरा फैक्टर आ सकता है कि जेनेटिक, क्योंकि बहुतों में ये जेनेटिक भी होता है कि उनके पेरेंट्स को डिप्रेशन रहा हो या ग्रैंड पेरेंट्स को रहा हो या और किसी रिलेटिव को रहा हो। तो पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरे हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे नेगेटिव थिंकिंग का होना, जैसे कुछ हो जाने के बाद हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी के डिस्कशन से या हमारा कॉन्फिडेंस मान लो लो हो जाता है साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिर हम कंफ्यूज होने लगते हैं, फिर हमको इन्फीरियोरिटी भी हो सकती है वो सोच के, नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो कि साइकोलॉजिकल इन नेचर है, तो दूसरा कॉज या फैक्टर वुड बी साइकोलॉजिकल। तीसरा हो सकता है, देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे एनवायरमेंट का स्ट्रेस, जैसे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो गया, कि अगर टॉक्सिक वर्क प्लेस है, आपके कलीग्स हैं या आपके बॉस है वो अगर कॉन्स्टेंटली आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, विच इज़ वेरी कॉमन इन दीज डेज, यू नो, या उनका बिहेवियर आपके प्रति अच्छा नहीं है, टॉन्टिंग बिहेवियर है, तो ये हो गया एनवायरमेंट का। कभी कभी क्या होता है फैमिली में भी टॉन्टिंग बिहेवियर बहुत होता है फैमिली मेंबर्स का, जैसे सिबलिंग्स का होगा या हस्बैंड वाइफ के बीच होगा या सास ससुर, है ना, ऐसे फैमिली मेंबर्स भी हमको टॉन्ट करते हैं कभी कभी, तो ये एनवायरमेंट है। कभी कभी फाइनेंशियल लॉसेस लोगों को हो जाते हैं, तो ये सारे एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि क्रॉनिकली इल होते हैं, कि बहुत साल से, जैसे कोई बेड रिडन हो या कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, उनको फिजिकल एलिमेंट्स हो, कोई मोडालिटीज हुई हो, तो वो भी एनवायरनमेंट का ही भाग होता है। और चौथा है लाइफस्टाइल फैक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है हमारे लिए अभी। और अब लाइफस्टाइल के फैक्टर्स में आता है जैसे पुअर स्लीप, जैसे आजकल हम जल्दी नहीं सो रहे हैं और हम जितना हमको सोना चाहिए उतना टाइम नहीं सो पा रहे हैं। फिर सब्सटेंस अब्यूज, जैसे अल्कोहल का सब्सटेंस लेना, ये बहुत एक कॉमन हो गया है, जैसे स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया, ऐसे बहुत सारे जो सब्सटेंस यूज होता है, तो ये भी लाइफस्टाइल फैक्टर्स में आते हैं। तो हमने जो चार चीजें अभी डिस्कस की वो है बायोलॉजिकल रीजंस, साइकोलॉजिकल रीजंस, एनवायरमेंटल रीजंस एंड लाइफस्टाइल रीजंस।
0: सो मैम ने बताई हुई चीजें फॉलो कीजिएगा, ये सब चीजें याद रखिएगा। एंड तुमच्या मनात काही प्रश्न असेल तर आम्हाला व्हाट्सअप करा 9359320080। सो बी सेफ, कीप मुस्कुराना एंड स्टे ट्यून्ड।

0: फरमाइश फरमाइश और फरमाइशें मैं आपकी पूरी करता हूँ, मुकम्मल करता हूँ। आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ MGM 90.8 FM और आज एक बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश हमारे पास आई है।
1: एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
0: फिल्म काला पत्थर का एक क्लासिकल गाना है जिसकी फरमाइश की है सौरव देशमुख ने। और ये गाने से एक बहुत अच्छी बात हमें सीखने को मिलती है कि ये जिंदगी भी एक रास्ता है और यहाँ पर रुकना मनाही है। साहिर लुधियानवी जी ने इसके बोल लिखे थे और किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी की दिलकश आवाज में गाना है और फिल्म 1979 में रिलीज हुई थी। गाना याद दिलाता है कि मुसाफिर का काम है चलते रहना चाहे रास्ता कैसा भी हो। तो दोस्तों फरमाइश वाला गाना भी हम एंजॉय करते हैं। आप भी फरमाइश हो तो आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर।

कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है। अब फिलहाल यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते स्टूडेंट्स, जो कि MPSC की तैयारी करते हैं, उनके लिए अब एग्जाम में थोड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि अब तक की ना तो जितने सारे MPSC के एग्जाम्स है वो सारे ऑफलाइन होते थे। एंड इसमें फिर दिक्कत ये आ रही थी कि रिजल्ट बहुत डिले हो रहा था, तकरीबन 4-5 महीने रिजल्ट को लग रहे थे आने, उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए भी तकरीबन 1-2 साल का तो टाइम लगता ही था। तो अब ये सब चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए प्रशासन ने एक फैसला लिया है कि आने वाले वक्त से जो MPSC की एग्जाम है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाली है। क्या बात यार, ये तो बहुत ही बढ़िया। और इसका रिजल्ट तकरीबन 21 दिन के अंदर रिलीज होगा, यानी कि 21 दिन में इसका रिजल्ट लगने वाला है। ये बहुत ही अच्छी बात है और इससे ना तो कैंडिडेट्स का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, वरना रिजल्ट आने तक इंसान टेंशन में होता है कि क्या होगा भाई। और रिजल्ट ना जब ऑफलाइन एग्जाम है तो जल्दी रिजल्ट लगता ही नहीं था, अब ये ऑनलाइन एग्जाम होगी इस वजह से रिजल्ट भी 21 दिन के अंदर निकाला जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो उस तरीके से स्टूडेंट्स आप तैयारी कीजिएगा, डिजिटल एग्जाम सिस्टम अभी हो चुकी है ये समझिएगा। स्टे ट्यून।

0: एक बात है भाई, अगर बहुत जोर से सुसू आई तो जाना कहाँ पर, बहुत बड़ा सवाल। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। शहर में बहुत जगहों पर सुसू करने की व्यवस्था है, यानी कि क्या मन जाते स्वच्छता ग्रह है, पर स्वच्छता ग्रह स्वच्छ नाही, फक्त ग्रह है ते स्वच्छता गाईड दिसत नाहीये। आणि आपल्या कॅनॉट प्लेस मध्ये सुद्धा दोन ठिकाणी वॉशरूम बनवण्यात आलेले आहेत, पण सध्या ते वॉशरूम बंद असतात म्हणे। मी कालच बघितलं होतं, रात्री गेलतो चक्क वॉशरूमला लॉक होतं, तर लोक काय करत होते वॉशरूमच्या बाहेर सुसू करत होते। अब वॉशरूम के बाहर सुसू कर रहे तो डबल गंदगी बढ़ेगी ना। महानगर पालिका ने वॉशरूम बनाया है तो उसको लॉक क्यों लगाना, और एक दिन से नहीं, पिछले 4-5 दिनों से वो लॉक वहां पर वॉशरूम को लगाए हुए है। क्यों लगाए भाई पता ही नहीं किसी को, तो इंसान करे तो करे क्या। अब इंसान ऐसी एक चीज है ना, अगर उसको प्रेशर आया तो जहां देखिए वहां पर वो खाली होता है। अब भले वॉशरूम पर लॉक है लेकिन वो वॉशरूम के गेट के ऊपर सुसु कर चला जा रहा है। सिचुएशन हो चुका है कैनॉट के वॉशरूम्स का, खुले में सुसु मत कीजिए। इतना मैं कहूंगा आपसे, आप फिर वापस मुझे पूछेंगे तो महानगर पालिका को बोलना वॉशरूम ओपन करें। अब भाई इकड़ आड़ तिकड़ विहीर, आता काय मनाव जाऊन द्या। स्टे ट्यून, पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी, MGM पेट केअर पेट क्लिनिक, आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6, कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

0: प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा.
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा विजिट mgmu.ac.in.
2: डिनर का मूड हो या फॅमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफ टॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.
3: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं?
4: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर.
5: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है. इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है. सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है.
4: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
5: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784.

सक्सेस ये लफ्ज जब भी सुनाई देता है तो कुछ चेहरे हमारे नजरों के सामने आ ही जाते हैं, उसमें से एक चेहरा है शाहरुख खान का। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। एंड बॉलीवुड के बादशाह SRK शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन 34 साल कंप्लीट किए, यानी कि 34 ईयर्स इन बॉलीवुड, यानी कि 3 दशक से भी ज्यादा का ऐसा सफर रहा है जिसमें एक बाहरी मतलब आउट ऑफ इंडस्ट्री से आने वाला लड़का जिसने विदाउट फिल्मी बैकग्राउंड की अपनी एक पहचान बनाई, अपने जुनून से, अपने मेहनत से और अपने टैलेंट से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया है। दीवाने से शुरू हुआ ये सफर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, स्वदेश, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान, पठान और जवान तक पहुंच चुका है। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, हर दौर में खुद को नया साबित करने का जज्बा। शाहरुख खान ना तो सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि अगर सपने बड़े हो, मेहनत सच्ची हो तो मंजिल किसी भी इंसान की हो ही सकती है। 34 साल में उन्होंने सिर्फ सुपरहिट फिल्में नहीं दी बल्कि प्यार करना सिखाया, हार कर दोबारा उठना सिखाया और सबसे जरूरी अपने सपनों पर यकीन करना सिखाया। आज जब ना तो बॉलीवुड में 34 साल पूरे कर रहे हैं अपने SRK, तो ये सिर्फ एक एक्टर का जश्न नहीं है बल्कि उस सफर का जश्न है जिसने लाखों लोगों को सपने देखने की हिम्मत दिखाई। वैसे आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है शाहरुख खान की जो आपने पहली बार देखी थी, जरा बताइए मुझे DM की जगह इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर। और भी बहुत सारी बातें होगी हमारी कुछ ही देर में, तब तक स्टे ट्यून।

0: on MTM 90.8 FM.
1: किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, एक वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था एसटीडी पीसीओ के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है RJ अदनान। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, हैशटैग आपको कोई नहीं सुन रहा हो, तो मेरी जान मैं हूँ आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप झिझक मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई आपका दोस्त बनकर अदनान का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आए गए ना तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो इतनी दरख्वास्त है कि फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूं कि सुकून के साथ सोल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

सो शो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक सवाल पूछा था, यानी कि पहली पूछा था, याद है ना? All is well. RJ and Anand's morning show. Freshness light radio ka flow. On MGM 90.8 FM. तो फिर से एक बार पहली दोहराता हूँ वो. कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. मैं दिन में एक बार आता हूँ, सबको एक बार हंसाता हूँ, ना मैं इंसान ना मैं मशीन, पर फिर भी सबको चलाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ. सो इसका एकदम सही सही और करेक्ट जवाब है अखबार. जी हाँ, दिन में एक बार आता है, सबको एक बार हंसाता है, और ना इंसान है ना मशीन है, लेकिन फिर भी सबको चलाता है. तो इसका एकदम सही जवाब है अखबार. और आज के सवाल का करेक्ट आंसर दिया है शुभम शेजू ने. सो कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम भाई, आज आप विनर बन चुके हो, आपको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा. सो शुभम भाई आज विनर बन गए हैं. आपको भी ऐसे विनर बनना है तो मेरे सवालों की इस पहेलियों के जवाब देते रहिए और गिफ्ट जीतते रहिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM. All is well. RJ and Anand's morning show. Freshness light radio ka flow. On MGM 90.8 FM.

0: मुक्ति पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध आज भेट दिया
1: उत्कर्ष क्लिनिक हर्सुल टी पॉइंट एचपी पेट्रोल पंप शेजारी जळगाव रोड छत्रपती संभाजीनगर अंतरुग्ण विभाग दिशा हॉस्पिटल समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ छत्रपती संभाजीनगर कॉन्टॅक्ट 8889 2688
2: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज
3: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा
2: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा विजिट mgmu.ac.in
4: डिनर का मूड हो या फॅमिली आउटिंग टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप टेस्टी स्टार्टर्स मलाई टिक्का कबाब चिकन तंदूरी मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी रूफ टॉप एम्बियंस अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर बीड बाईपास रोड छत्रपति संभाजीनगर
5: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं
6: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर
7: ऑटोमेशन के जमाने में AI मशीन लर्निंग IoT तो जरूरी है उसके साथ साथ सेंसर्स कंट्रोल सिस्टम कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है सोच बदलो इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो अच्छा जॉब तो मिलना ही है
6: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
7: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784

0: हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया।
1: All is well. RJ and Ananika morning show. Freshness light radio ka flow.
0: On MGM 90.8 FM. RJ अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM। बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RJ अदनान आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है, मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा DMKG का इंस्टा पर, RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
0: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट MGMU.AC.IN और कॉल 9230877784।

0: your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology, so MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज.
2: बारावी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि पदवी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा. पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे. यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा.
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी.
3: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं?
4: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर.
3: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है. इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है. सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है.
4: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
3: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84.

0: प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक. आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी. MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6. कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130. MGM पेट केअर.
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
3: एडमिशन ओपन MGM यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IoT, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन. फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति संभाजीनगर.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM।
2: साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: परफेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एनजीएम 90.8 FM।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमा मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: चतुर गोल ये क्या रहा गोला चतुर गोला चतुर एक पैर है ना या गोला बोलना या चतुर बोलना
1: एक

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपका मंडे अब तक शानदार रहा होगा। वैसे मंडे को लेकर लोगों की दो ही फीलिंग्स होती है, या तो ओ फिर से काम शुरू या फिर नए हफ्ते की नई शुरुआत। लेकिन जो भी हो, शाम का ये वक्त सिर्फ आपका है। अब ऑफिस, कॉलेज या दिन भर की भागदौड़ को थोड़ा साइड में रखिए और खुद के लिए कुछ पल निकालिए। अगर आप अभी घर लौट रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं या फिर घर पर चाय की चुस्कियों का मजा ले रहे हैं, तो हम हैं आपके साथ अगले कुछ घंटों तक, लेकर ढेर सारी मस्ती, शानदार गाने और पॉजिटिव वाइब्स। नई हफ्ते की शुरुआत है तो क्यों ना खुद से एक छोटा सा वादा किया जाए। इस हफ्ते कुछ नया सीखेंगे, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालेंगे और छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बजने वाला है एक ऐसा गाना जो आपके मंडे इवनिंग को और भी खास बना देगा। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, मुस्कुराइए और एंजॉय कीजिए ये शानदार ट्रैक। सिर्फ यही, ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। अगर आप इस वक्त सड़क पर हैं, ऑफिस से घर लौट रहे हैं या किसी काम से बाहर निकले हैं तो हो सकता है ट्रैफिक ने आपकी स्पीड थोड़ी कम कर दी हो, लेकिन याद रखिए ट्रैफिक सिर्फ आपकी नहीं हर किसी की परीक्षा ले रहा होता है। ऐसे में थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बार बार हॉर्न बजाने से या जल्दबाजी करने से ट्रैफिक कम नहीं होगा, लेकिन आपका तनाव जरूर बढ़ सकता है। इसीलिए गहरी सांस लीजिए, अपना पसंदीदा गाना सुनिए और सफर को थोड़ा आसान बनाइए। याद रखिए कुछ मिनट पहले पहुंचने से ज्यादा जरूरी है सुरक्षित पहुंचना। सड़क पर हर किसी का कोई ना कोई इंतजार कर रहा होता है, किसी के घर वाले, दोस्त या अपने। तो आज अगर ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है तो गुस्सा नहीं, थोड़ा सब्र दिखाइए, किसी को रास्ता दीजिए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एक शांत और जिम्मेदार ड्राइवर ही सड़क को सबके लिए बेहतर बनाता है। चलिए अब माहौल को और खुशनुमा बनाते हैं, एक शानदार गाने की ओर बढ़ते हैं। ओनली ऑन MG 94.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। तो शुरू हो चुका है एक नया हफ्ता और हाँ, आज है मंडे। कई लोगों के लिए मंडे का मतलब होता है अलार्म से लड़ाई, ऑफिस की मीटिंग्स और वीकेंड को याद करना। लेकिन अगर नज़रिया थोड़ा बदल दिया जाए तो मंडे एक नई शुरुआत का नाम भी हो सकता है। सोचिए, हर मंडे हमें एक नया मौका देता है कुछ नया शुरू करने का, अपने अधूरे काम पूरा करने का और अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ाने का। ज़रूरी नहीं कि आप आज कोई बहुत बड़ा बदलाव करें, कभी कभी छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। हो सकता है आज आप सिर्फ नया लक्ष्य चुनो, कोई अच्छी आदत शुरू करो या फिर खुद से एक वादा करो, इस हफ्ते खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालेंगे। याद रखिए, हर सफल इंसान ने भी किसी मंडे से ही अपने हफ्ते की शुरुआत की थी, इसलिए मंडे को बोझ नहीं बल्कि एक नए अवसर की तरह देखिए। तो मुस्कुराइए, खुद पर भरोसा रखिए और पूरे जोश के साथ इस नए हफ्ते का स्वागत कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास भी आपको आपके सपनों की ओर करीब ले जा सकता है। इसी पॉजिटिव सोच के साथ अब वक्त है एक शानदार गाने का, ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: रोलर्स भी महत्वपूर्ण है। इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है। सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है।
1: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE
0: MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना। विजिट MGMU.AC.IN और कॉल 9230 8774।

0: खबर का।
1: आप सुन रहे हैं एमजी मनाली पॉइंटेड फिल्म और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजी मनीषा आपके साथ। बारिश की बूंदे जब धरती पर गिरती है तो मौसम ही नहीं हमारा मूड भी फ्रेश हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये बारिश होती कैसी है? दरअसल इसके पीछे काम करता है प्रकृति का एक बेहद ही दिलचस्प साइंस। सूरज की गर्मी से नदियों, तालाबों, झीलों और समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर आसमान में चला जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं इवापोरेशन यानी बाष्पीकरण। जब ये भाप ऊपर ठंडी हवा के संपर्क में आती है तो छोटे छोटे पानी के कणों में बदल जाती है और बादलों का रूप ले लेती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं कंडेंसेशन यानी संघनन। अब जैसे जैसे बादलों में पानी की मात्रा बढ़ती जाती है ये बूंदें भारी होने लगती है और जब बादल इन्हें संभाल नहीं पाते तो ये बूंदें बारिश बनकर धरती पर गिरने लगती है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। यानी हर बारिश की बूंद एक लंबा सफर तय करके हमारे पास पहुंचती है, धरती से आसमान तक और फिर वापस धरती पर। तो अगली बार जब बारिश हो तो सिर्फ मौसम का मजा ही मत लीजिए बल्कि प्रकृति

के इस अद्भुत साइंस को भी याद कीजिए। फिलहाल बारिश की इन खूबसूरत बातों के साथ अब वक्त है एक शानदार गाने का। जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश की पहली बूंद गिरते ही एक चीज जो लगभग हर किसी को पसंद आती है वो है मिट्टी की वो प्यारी सी खुशबू। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये खुशबू आती कहाँ से है? दरअसल इसके पीछे छिपा है दिलचस्प साइंस। लंबे समय तक जब जमीन सूखी रहती है तो मिट्टी में मौजूद कुछ खास तरह के बैक्टीरिया एक पदार्थ बनते हैं जिसे जियोस्मीन कहा जाता है। एक नेचुरल कंपाउंड होता है जो मिट्टी में जमा रहता है। जैसे ही बारिश की पहली बूंदें जमीन पर गिरती है ये बूंदें मिट्टी में मौजूद जियोस्मीन को हवा में फैला देती है। फिर हवा के साथ ये खुशबू हमारे नाक तक पहुंचती है और हमें महसूस होता है कि मिट्टी की वो सूंधी सूंधी महक जिसे हम सभी इतना पसंद करते हैं। साइंटिस्ट इस खुशबू को पेट्रिकोर भी कहते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि इंसान इस खुशबू को बहुत कम मात्रा में भी महसूस कर सकता है। शायद यही वजह है कि पहली बारिश की खुशबू हमें इतनी खास और सुकून देने वाली लगती है। तो अगली बार जब बारिश की पहली फुहारे पड़े और मिट्टी की सौंधी महक आए तो याद रखिए कि ये सिर्फ एहसास नहीं बल्कि प्रकृति और विज्ञान का एक खूबसूरत मेल है। फिलहाल इसी प्यारी सी खुशबू और बारिश के मौसम के साथ अब वक्त है एक शानदार गाने का। आप जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। एक नया हफ्ता शुरू हो चुका है और अक्सर मंडे आते ही हम सोचने लगते हैं इस हफ्ते बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन कई बार बिना प्लानिंग के पूरा हफ्ता निकल जाता है और हम सोचते रह जाते हैं कि समय कहाँ चला गया। तो क्यों ना इस हफ्ते की शुरुआत एक छोटी सी प्लानिंग के साथ की जाए। सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालिए और पूरे हफ्ते की ज़रूरी कामों की एक लिस्ट बना लीजिए। सबसे पहले उन कामों को लिखिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उन्हें दिन के हिसाब से बांट दीजिए। इससे न सिर्फ आपका काम आसान होगा बल्कि तनाव भी कम महसूस होगा। याद रखिए, हर दिन सब कुछ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लेकर आते हैं। और हाँ, अपनी प्लानिंग में सिर्फ काम ही नहीं, खुद के लिए भी थोड़ा समय ज़रूर निकालिए। चाहे वो परिवार के साथ वक्त बिताना हो, अपनी पसंद का म्यूज़िक सुनना हो या फिर थोड़ा आराम करना हो, क्योंकि जब प्लानिंग सही होती है तो न सिर्फ रिजल्ट बेहतर होता है बल्कि पूरा हफ्ता भी ज़्यादा संतुलित और खुशहाल महसूस होता है। तो इस हफ्ते को यूं ही जाने मत दीजिए, इसे प्लान कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए और हर दिन को खास बनाइए। इसी पॉजिटिव सोच के साथ अब सुनते हैं कुछ शानदार गाने ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: धीरे धीरे मंडी की ये शाम अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा रहा होगा। आप सुन रहे हैं एमजीएम नाड़ी पौनेड़ फिल्म और मैं हूँ मनीषा आपके साथ। और अगर दिन थोड़ा व्यस्त रहा है, थका देने वाला भी रहा है, तो उम्मीद है कि हमारे साथ बिताए इन पलों ने आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाई होगी। कई लोग मंडे को हफ्ते का सबसे मुश्किल दिन मानते हैं, लेकिन अब जब ये दिन खत्म होने जा रहा है तो एक बात खुद से ज़रूर कहिए, मैंने आज अपना बेस्ट दिया और यही सबसे ज़रूरी है। याद रखिए, हर मंडे एक नई शुरुआत लेकर आता है और हर मंडे की शाम हमें ये एहसास दिलाती है कि हमने एक और दिन, एक और कदम अपने सपनों की ओर बढ़ा लिया है। अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का, अपने परिवार के साथ समय बिताने का, एक कप चाय या कॉफ़ी के साथ दिन भर की थकान को अलविदा कहने का और आने वाले कल के लिए खुद को तैयार करने का। तो गुड बाय मंडे और हेलो ट्यूसडे। उम्मीद है कि आने वाला दिन आपके लिए नई उम्मीदें, नई खुशियां और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए। फिलहाल आप सुन रहे हैं एमजीएम नाड़ी पौनेड़ फिल्म। फिलहाल अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। अब इजाज़त लेती हूँ मैं, लेकिन म्यूजिक का सफ़र यही ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि हम है राही म्यूजिक के और फिर मिलेंगे चलते चलते ओनली ऑन एमजीएम नाड़ी पौनेड़ फिल्म। साथ है तो बात
1: है खास एमजीएम पेट केयर पेट क्लिनिक आरोग्य तपासणी उपचार शस्त्रक्रिया लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6 कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130 एमजीएम पेट केयर
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स
5: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा
6: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in
7: ऍडमिशन ओपन एमजीएम युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी
8: प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग IoT सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग सायबर सिक्युरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग VLSI डिझाईन and technology, electrical engineering, robotics and automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है। अब फिलहाल यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि MPSC की तैयारी करते हैं, उनके लिए अब एग्जाम में थोड़ा चेंज आने वाला है। क्योंकि अब तक की ना तो जितने सारे MPSC के एग्जाम्स है वो सारे ऑफलाइन होते थे, एंड इसमें फिर दिक्कत ये आ रही थी कि रिजल्ट बहुत डिले हो रहा था। तकरीबन 4-5 महीने रिजल्ट को लग रहे थे आने, उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए भी तकरीबन 1-2 साल का तो टाइम लगता ही था। तो अब ये सब चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए प्रशासन ने एक फैसला लिया है कि आने वाले वक्त से जो MPSC की एग्जाम है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाली है। क्या बात है यार, ये तो बहुत ही बढ़िया। और इसका रिजल्ट तकरीबन 21 दिन के अंदर रिलीज होगा, यानी कि 21 दिन में इसका रिजल्ट लगने वाला है। ये बहुत ही अच्छी बात है और इससे ना तो कैंडिडेट्स का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, वरना रिजल्ट आने तक इंसान टेंशन में होता है कि क्या होगा भाई। और रिजल्ट ना जब ऑफलाइन एग्जाम है तो जल्दी रिजल्ट लगता ही नहीं था, अब ये ऑनलाइन एग्जाम होगी इस वजह से रिजल्ट भी 21 दिन के अंदर निकाला जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो उस तरीके से स्टूडेंट्स आप तैयारी कीजिएगा, डिजिटल एग्जाम सिस्टम अभी हो चुकी है ये समझिएगा। स्टे ट्यून्ड।

एक बात है भाई, अगर बहुत जोर से सुसु आई तो जाना कहाँ पर, बहुत बड़ा सवाल। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। शहर में बहुत जगहों पर सुसु करने की व्यवस्था है, यानी कि क्या मानते स्वच्छता ग्रह है, पर स्वच्छता ग्रह स्वच्छ नाही, फक्त ग्रह आहे ते स्वच्छता गाईड दिसत नाहीये। आणि आपल्या कॅनॉट प्लेस मध्ये सुद्धा दोन ठिकाणी वॉशरूम बनवण्यात आलेले आहेत, पण सध्या ते वॉशरूम बंद असतात म्हणे। मी कालच बघितलं होतं, रात्री गेलतो, चक्क वॉशरूमला लॉक होतं, तर लोक काय करत होते, वॉशरूमच्या बाहेर सुसू करत होते। अब वॉशरूम के बाहेर सुसू कर रहे तो डबल गंदगी बढेगी ना। महानगर पालिकाने वॉशरूम बनाया है तो उसको लॉक क्यों लगाना, और एक दिन से नहीं, पिछले 4-5 दिनों से वो लॉक वहां पर वॉशरूम को लगाए हुए है। क्यों लगाए भाई, पता ही नहीं किसी को, तो इंसान करे तो करे क्या। अब इंसान ऐसी एक चीज है ना, अगर उसको प्रेशर आया तो जहाँ देखिए वहाँ पर वो खाली होता है। अब भले वॉशरूम पर लॉक है, लेकिन वो वॉशरूम के गेट के ऊपर सुसु करके चला जा रहा है। सिचुएशन हो चुका है कैनॉट के वॉशरूम्स का, खुले में सुसु मत कीजिए। इतना मैं कहूंगा आपसे, आप फिर वापस मुझे पूछेंगे तो महानगर पालिका को बोलना वॉशरूम ओपन करे। अब भाई इकड़ा आड़ तिकड़ विहीर, आता काय मनावर जाऊन द्या। स्टे ट्यून।

सक्सेस ये लफ्ज जब भी सुनाई देता है तो कुछ चेहरे हमारे नजरों के सामने आ ही जाते हैं, उसमें से एक चेहरा है शाहरुख खान का। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। एंड बॉलीवुड के बादशाह SRK शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन 34 साल कम्प्लीट किए, यानी कि 34 ईयर्स इन बॉलीवुड, यानी कि 3 दशक से भी ज्यादा का ऐसा सफर रहा है जिसमें एक बाहरी मतलब आउट ऑफ इंडस्ट्री से आने वाला लड़का जिसने विदाउट फिल्मी बैकग्राउंड की अपनी एक पहचान बनाई, अपने जुनून से, अपने मेहनत से और अपने टैलेंट से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया है। दीवाने से शुरू हुआ यह सफर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, स्वदेश, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान, पठान और जवान तक पहुंच चुका है। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, हर दौर में खुद को नया साबित करने का जज्बा। शाहरुख खान ना तो सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि अगर सपने बड़े हो, मेहनत सच्ची हो तो मंजिल किसी भी इंसान की हो ही सकती है। 34 साल में उन्होंने सिर्फ सुपरहिट फिल्में नहीं दी बल्कि प्यार करना सिखाया, हार कर दोबारा उठना सिखाया और सबसे जरूरी अपने सपनों पर यकीन करना सिखाया। आज जब ना तो बॉलीवुड में 34 साल पूरे कर रहे हैं अपने SRK, तो ये सिर्फ एक एक्टर का जश्न नहीं है बल्कि उस सफर का जश्न है जिसने लाखों लोगों को सपने देखने की हिम्मत दिखाई। वैसे आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है शाहरुख खान की जो आपने पहली बार देखी थी, जरा बताइए मुझे DM की जगह इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर। और भी बहुत सारी बातें होगी हमारी कुछ देर में, तब तक स्टे ट्यून।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज.
2: बारावी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि पदवीनंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा. पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे. यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा.
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी. mgmu.ac.in.
3: इंटरव्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं?
4: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं, पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर.
5: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है. इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है. सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है.
4: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE.
5: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84.

0: your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology, so MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज.
2: बारावी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि पदवी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा. पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे. त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा.
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा विजिट mgmu.ac.in.
3: इंटरव्ह्यू क्लियर होता ही नहीं या जॉब मिलके भी टिकती नहीं,
4: क्योंकि थ्योरी तो सब सिखाते हैं पर इंडस्ट्री को चाहिए प्रैक्टिकली स्किल्ड इंजीनियर.
5: ऑटोमेशन के जमाने में AI, मशीन लर्निंग, IoT तो जरूरी है, उसके साथ साथ सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर्स भी महत्वपूर्ण है. इंटरडिसिप्लिनरी और कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग अप्रोच ही इंडस्ट्री की जरूरत है, और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से प्राप्त होता है. सोच बदलो, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है.
4: कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने के लिए हम लेकर आए हैं UDICE,
5: MGM यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, जहां पढ़ाई मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री एंड जॉब रेडी बनना. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877 84.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FM 90.8 FM।
1: साथ है तो बात है।